श्रोताओं सुप्रभात। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी।

0: सिंधु ने क्वार्टरफाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रही थी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

लीजिए अब सुनिए। उमाकांत, रमाकांत, गुंदेचा, इनकी आवाजों में कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये भक्ति गीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत मन्ना डे और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है हिमालय से ऊंचा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की गाई ये रचना। फिल्म का नाम था हम दोनों। इसी भक्ति गीत के साथ ही आज का ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:30 होने ही वाले हैं श्रोता। थोड़ी देर में अब आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज के इस अंक में आलेख है G.S. वरकड़े का। तो लीजिए सुनिए आज के विचार कार्यक्रम चिंतन में।
1: सुख क्या है, इसकी अनुभूति कितने मनुष्य कर पाते हैं, और जो अनुभूति कर पाते हैं क्या सचमुच वे सुख के गूढ़ अर्थ को समझ पाते हैं? इस पर कुछ कहना सचमुच बहुत कठिन है। तब भी संसार के सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और इसे पा सकें इसके लिए दिन रात प्रयास करते हैं। वांछित सुख की प्राप्ति पर अपार प्रसन्नता का अनुभव भी सुख की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को होती है। पर दूसरे ही क्षण ऐसा कैसे हो जाता है कि सुख की वो अनुभूति पानी के बुलबुले के समान कहीं अनंत में विलीन हो जाती है? ऐसे में ये प्रश्न उभर कर मनुष्य के सामने उपस्थित हो जाता है कि सुख मृग तृष्णा तो नहीं? उत्तर प्रतिउत्तरों के बीच मन मस्तिष्क में मंथन शुरू हो जाता है, पर प्रश्नों पर कहीं विराम नहीं लग पाता। जीवन के अनंत प्रवाह में जब ऐसे ही अनेक प्रश्नों का अंबार मनुष्य की स्वभावगत विशेषताओं ने लगा दिया, तब लोकमानस का अध्ययन किया गया। परिणाम स्वरूप न्याय दर्शन में इसे मनोअनुकूलम सुखम कहा गया, यानी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति से उत्पन्न होने वाली संतुष्टि ही सुख है। यह भी सच है, सुख कहने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है इसे प्राप्त करना। सुख प्राप्ति के मार्ग में अनेक कठिन से कठिन बाधाएं आती हैं। उन्हीं के नाश के लिए अध्यात्म जगत में उपासना को अस्त्र बनाया गया और जनमानस में आराधना की प्रथा प्रचलित हुई। विघ्न बाधाओं को हरने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्री गणेश की आराधना उपासना शुरू हुई। प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार प्रत्येक कार्य और उनके विचार पर स्थित विश्वास ही गणेश जी का तात्विक रूप है। इसलिए ये माना गया कि इस विश्वास के जाग जाने पर शंका, भय और भ्रांति जैसी सभी विघ्न बाधाएं स्वयं नियंत्रित हो जाती हैं। यही कारण है कि भारतीय जनमानस में किसी भी कार्य के शुभारंभ के समय विघ्न विनाशक और रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश की आराधना की परंपरा अनादिकाल से प्रचलित है। लोक में प्रचलित

0: परंपरा का सार्थक उपयोग पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने के लिए शक्ति संचय के उद्देश्य से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जनचेतना पैदा करने में गणेशोत्सवों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जन समुदाय को संगठित करने का, जन प्रचार और जनसंपर्क का ऐसा अनूठा उदाहरण स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। सार्वजनिक गणेशोत्सवों के आयोजनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति दी और उसमें भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का स्वाभिमान भी भर दिया। गणेशोत्सवों की परंपरा जहां जनमानस को अध्यात्म और संस्कृति से जोड़ती है, वहीं स्वातंत्र्य मूल्यों से भी हमारा परिचय कराती है और स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखने की प्रेरणा भी ये हमें प्रदान करती है। मंत्रयोग संहिता में भी तो कहा गया है, विश्वास फलदायी होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आलेख था G.S. वरकड़े का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान सुनने का, जिसमें आज की इस कड़ी में मुख्य गायक स्वर है अनूप जलोटा और श्रीकांत पारगवकर का, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का। तो लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिनी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था अनूप जलोटा और श्रीकांत पारगांवकर का। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:45 होने ही वाले हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:45 हो चुके हैं श्रोताओं। अब जानिएगे आज की कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। वहीं 7:20 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। सुबह 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। 8:30 पर समन्वित रूपम कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। वहीं सुबह 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिलीज किए जाएंगे। वहीं दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 2:30 पर पुनः हम विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले करेंगे। नया भारत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप

सुनेंगे दोपहर 3 बजे। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा का आगाज होगा शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। गुड इवनिंग बालाघाट, ये कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। 6:30 पर शाम को आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। वहीं शाम 7:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार। 7:10 पर होंगे भोपाल से प्रादेशिक समाचार। और कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे किसान साथियों का कार्यक्रम किसान वाणी।

रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। 8:45 पर रात्रि आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं रात्रि 9 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट लाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। रात्रि 10:30 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे आप। और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:50 हो चुके हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिसमें पहला गीत

0: मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना।
1: अय्या

कटी पतंग। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीत आरडी बर्मन का था और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस गीत के पहले आपने सुना था शागिर्द फिल्म का गीत जिसमें आवाज़ थी लता मंगेशकर की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। लीजिए अब सुनिए मेरे सनम, इस फिल्म का ये गीत।

काली टोपी लाल रुमाल। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, काली टोपी लाल रुमाल इस फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हो रहा है। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 7:10 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: पहुँचाए हम जन जन तक सपनों को, दें हम आकार। आकाशवाणी
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर शूटर्स से मुलाकात। स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की

पहल में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे।

0: महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े, इसके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरजनगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभा ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉल्स ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉल्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान

होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगढाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन आज के इस अंक में। कार्यक्रम है नमस्कार बालाघाट। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ गीता मिश्राम। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक नई शुरुआत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, कल शाम की बारिश और आज सुबह की हल्की बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। बस इतना है कि आज धूप और तेज ना निकले, नहीं तो बारिश और धूप दोनों के मिलन से फिर से बीमारियों का मौसम बन जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मौसम का मजा लेते हैं क्योंकि अभी है थोड़ी ठंडक। वैसे भी श्रोताओं, आज के इस दुनिया में हर व्यक्ति जैसा बाहर से दिखता है या जो परिस्थितियां पैदा करता है हमेशा वैसा नहीं होता है। अर्थात यदि कोई जानबूझकर आपको किसी मुसीबत या अपमानजनक स्थिति में डालता है तो वह बुरा है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको उस मुसीबत से बाहर निकालता है उसे केवल इस अच्छे काम के आधार पर महान नहीं माना जाना सकता, है ना। केवल एक अच्छे कार्य से प्रभावित न हो बल्कि पूरे व्यवहार और कार्य को समझे। वैसे तो विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी है श्रोताओं। आज हम यहाँ हैं तो विश्वास के कारण है। हर कोई एक समान तो नहीं होता, ये भी है और ये हम जानते भी हैं, लेकिन बात विश्वास की नहीं सतर्कता की है। जब आप सचेत रहकर कोई कार्य करते हैं तो आपसे त्रुटियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है तथा अनचाही दुर्घटनाओं और नुकसान से बचाती है। श्रोताओं, हमारा कहने का तात्पर्य तो सिर्फ इतना है कि आप व्यवहारिक कुशाग्र दोनों बनिए। आप में सैद्धांतिक

नैतिक और व्यावहारिक दोनों गुणों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि आज के इस समय में हमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।

व्यक्ति में सैद्धांतिक और व्यवहारिक गुणों के साथ हम बात कर रहे थे कार्यक्रम में प्रखर बुद्धि की। इसे हम इस कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगी समझाने की। एक नन्ही सी चिड़िया थी जो बहुत उत्साहित और खुश रंग थी। सर्दियां आने वाली थी और उसे अपनी जगह बदलकर नई दिशा की ओर चले जाना चाहिए था, लेकिन वह उस जगह में बहुत खुश थी और उसने सोचा थोड़ी देर रुक कर जाऊंगी, और वह भूल गई। उसके साथ ही वहां से चले गए और वह वहीं पे रुक गई थोड़ी देर। फिर वहां से उसने निकलने की सोची कि अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। उसने उड़ान भरी, लेकिन ठंड बढ़ चुकी थी जिसके कारण उसके पंख ज़्यादा उड़ान नहीं भर पा रहे थे, और कुछ ही दूर उड़ने के बाद उसके पंख ठंड के कारण जम गए। वो नीचे गिर गई। ठंड से वो जमने लगी, तभी वहाँ से एक गाय गुजर रही थी। उसने चिड़िया पर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी से पंखों की बर्फ पिघल गई और उसे अच्छा लगने लगा और अंदर में गर्म महसूस होने लगा। वह गोबर के अंदर से ही चहचहाने लगी। वह उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन गोबर के अंदर खुश थी। एक बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने चिड़िया की चहचहाट सुनी। उसने गोबर को हटाया और चिड़िया को खा लिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो आप पर गोबर डाले, यानी कि आपको आपकी बुराइयां बताए या अपमान करे, वो आपका दुश्मन हो। और हर कोई जो आपको गंदगी से बाहर निकाले, आपका दोस्त हो। हमारे आसपास का वातावरण हमने तो ऐसा बना लिया है आज के इस समय में कि अगर मुझे कोई परेशानी है तो मुझे उसको सबको बताना है। वे हमें ढेरों सारे समाधान देते हैं, जिसको भी हम बताते हैं अपनी सारी परेशानियां मन हल्का करने के लिए, लेकिन शायद ही उसमें से कोई बात आपके काम की हो। उससे बेहतर है श्रोताओं कि आप थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, अपनी ऊर्जा का उपयोग खुद को शांत करने और उस परेशानी को या उस किसी भी चीज को समझने के लिए लगाएं, क्योंकि कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती सिवाय उसके जिसे आपने इजाजत दी हो आपको परेशान करने की। श्रोताओं, शायद आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है श्रोताओं कि खुद को समय दीजिए, अपने आप को समझिए और आगे बढ़ते रहिए।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इतिहास को। आज है 13 जून और 13 जून का इतिहास कहता है कि साल 1940 में 13 जून के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उसे हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में फांसी की सजा दी गई थी। वहीं कीम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 13 जून 1993 में। साल 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। साल 2002 में 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त हुई थी 13 जून के दिन। साल 1950 में दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाला ग्रुप एलियाज एक्ट लागू किया गया था। ये एक रंगभेद कानून है जो 13 जून से लागू हुआ था वहाँ। और साल 2006 में नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया था 13 जून को। आज ही के दिन सन 2008 में टेलीकॉम मलेशिया में आइडिया सेलुलर कंपनी की 15% हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं अमेरिकी कांग्रेस ने श्रम विभाग का गठन हुआ था 13 जून साल 1888 में। इतिहास में अब जान लेते हैं उन व्यक्तियों की जिनका है आज जन्मदिन। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म आज ही के दिन सन 1923 में हुआ था। वहीं भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून साल 1994 में हुआ था। और साल 1981 में आज ही के दिन कैप्टन अमेरिका के नाम से मशहूर अमेरिकी अभिनेता कीम इवांस का जन्म हुआ था।

श्रोताओं, इतिहास में अब बात करेंगे मशहूर गीतकार प्रेम धवन की, जिनका आज जन्मदिन है। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 13 जून सन 1930 को अम्बाला में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे, जिनमें हैं चंदा मामा, दूर के, ए मेरे प्यारे वतन, छोड़ो कल की बातें। प्रेम धवन जी न केवल गीतकार थे, वरन इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, नृत्य निर्देशन भी किया और अभिनय भी किया था, जिसमें फिल्म नया दौर का जो गीत है ना, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, प्रेम धवन के ही नृत्य निर्देशन का कमाल थी। उन्हें पहला ब्रेक मिला था फिल्म जिद्दी के गीत चंदा जा रे जा रे, जिसे लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। फिल्म एक साल के लिए उन्होंने कुछ ऐसी रचना की थी कि आज भी उन जो रचना की लाइनें हैं याद की जाती हैं, जो कि इस प्रकार है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, ले ले के हार फूलों का आई तो भी बहार, ले ले के हार फूलों का आई तो थी बहार, नजरें उठा के हमने ही देखा एक बार, आंखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया। 7 मई 2001 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में प्रेम धवन ने अंतिम सांस ली थी। दिल को छू लेने वाले गीतों में प्रेम की याद हमेशा बसी रहेगी।

और हम उनके इन प्यारे गीतों को हमेशा याद करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। इस प्यारे से गीत के साथ आज प्रेम धवन जी के जन्मदिन पर सादर सुमन।

0: श्रोताओ,
1: अब बात कर लेते हैं इतिहास में आगे, आज उन व्यक्तियों की जिन्होंने आज के दिन अंतिम सांस ली थी, यानी इस दुनिया से रुखसत ली थी। अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी विचारकों के व्यक्ति नानक भील का निधन सन 1922 में 13 जून को हुआ था। विनायक पांडुरंग करमटकर, इन्होंने अंतिम सांस ली थी 13 जून साल 1967 में। वे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। वहीं भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों में से एक

मेजर मनोज तलवार, इनका निधन आज ही के दिन सन 1999 में हुआ था। कीर्ति चौधरी, तीसरे सप्तक की एकमात्र कवित्री, इनका निधन 2008 में 13 जून को हुआ था। प्रसिद्ध गजल गायक मेहदी हसन ने इस दुनिया से रुखसत ली थी 13 जून सन 2012 में। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का निधन साल 2016 में आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी इतिहास की। कार्यक्रम में अभी और भी है बहुत कुछ, पर पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, 13 जून मुख्य दिवस की बात अगर करें तो 13 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता, एक आनुवांशिक स्थिति जिसके कारण त्वचा, बाल और आंखों में मेलेनिन की कमी हो जाती है जिससे इनका रंग सफेद हो जाता है। ऐसे पीड़ित लोगों को त्वचा, कैंसर, धूप से संवेदनशीलता और दृष्टि दोष का खतरा रहता है। ऐसे में इनके बारे में जागरूकता फैलाना, इस आनुवांशिक स्थिति में पीड़ित लोगों के खिलाफ होने वाली भेदभाव को समाप्त करना और उनके मानव अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही रंगहीनता को लेकर होने वाले अंधविश्वास व मिथ्यों को तोड़ना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य और कारण है। तो आज इस दिवस पर हम जागरूक नागरिक होकर

दिन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के सुविचार की भी बात कर लेते हैं। तो महान विचारकों ने अनमोल विचार और सिद्धांत जो आपके दृष्टिकोण, आदतों और जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं, है ना। कई विचारक ने ऐसे अनमोल वचन दिए हैं जो जीवन में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक विचार को जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की लेखनी से है। शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी है, शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी बातों को रटना है, बल्कि शिक्षा वह है जो हमें सोचना सिखाती है। बिल्कुल सही, रटने की बजाय जीवन में सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ही सच्ची शिक्षा है। यह हमें केवल किताबी ज्ञान एक तक सीमित नहीं रखती, बल्कि व्यवहारिक और नैतिक रूप से भी सक्षम बनाती है, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खूब पढ़ते हैं।

श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं आज की रोजगार सूचना की। तो आज की रोजगार सूचना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ASI पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें महिला और पुरुष भर्ती के लिए CISF ASI

0: व्यवसाय पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या है 24। पदों का नाम है ASI फार्मेसिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। पूरे भारत में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जो कि 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक निर्धारित किए गए हैं। आयु सीमा निर्धारित की गई है 18 वर्ष से 24 वर्ष। योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसके लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट cisfrect.cisf.gov.in पर लॉग इन करके प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अब अनुमति दीजिए आपसे इस अंक से कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मौसम का आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें श्रोताओं कि आज आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला था अरुण सिंह परते का और अंकित चाकुले का। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की और मैं थी आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ गीता मिश्रा। तो दीजिए अनुमति आज के इस अंक से और स्वीकार कीजिए मेरा और मेरी पूरी टीम का नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। सुबह के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025

0: 2026 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है।

0: मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुँचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है,

ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है।

0: विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई ये रचनाएं कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही हमारा आज का ये सुगम संगीत का कार्यक्रम हम यही संपन्न करते हैं। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समन्वित रूपक कार्यक्रम।
1: साथ की, जी हाँ, साथ की, जो साथ हमेशा एक दूसरे के साथ होता है, और वही साथ जो हमें एहसास दिलाता है कि सफर को आसान बना लेता है। जिंदगी एक लंबा सफर है, और इस सफर को आसान बनाने वाली सबसे बड़ी नेमत है किसी का साथ होना। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे किसी न किसी पल किसी साथ की जरूरत जरूर होती है। साथ का मतलब सिर्फ किसी के पास होना नहीं, बल्कि हर खुशी और हर गम में एक दूसरे के हाथ में हाथ रखना, यानी कि साथ रहना है।

जब कोई साथ निभाता है तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। अच्छे वक्त में तो लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन असली साथी वही होता है जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारी कामयाबी पर दिल से खुश हो और हमारी नाकामयाबी में हौसला बढ़ाए। वही सच्चा हमसफर कहलाता है।

0: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
2: जब साथ की बात होती है तो साथ निभाना एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ऐसी कि जिसको कहा जाता है कि जन्म जन्म का रिश्ता। जब साथ की बात होती है तो कुछ वादे होते हैं, कुछ एहसास होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो दिल से एक खिंचाव पैदा करती हैं, एक अट्रैक्शन पैदा करती हैं कि साथ कहां तक निभाना है, जिंदगी भर या कुछ क्षण तक।

साथी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि भरोसे और मोहब्बत और अपनेपन का नाम है। एक अच्छा साथी हमेशा खामोशी को भी समझ लेता है और उसकी मौजूदगी दिल को सुकून देती है और यह एहसास दिलाती है कि हम तन्हा नहीं हैं। कई बार कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बल्कि एहसासों से चलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है।

साथ चलना सिर्फ एक ही रास्ते पर चलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के ख्वाबों को, जज्बातों को, संघर्षों को समझना भी है। रास्ते में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिश्ते में इज्जत और भरोसा बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। साथ चलने वाले लोग सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते या पहुंचाते, बल्कि सफर को यादगार भी बना देते हैं। एक शायर ने क्या खूब खूबसूरत बात कही है, सफर लंबा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, सफर लंबा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई अपना साथ चलने वाला हो।

0: इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और

0: के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा के परिणाम में बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक परीक्षार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। यहां उनका विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। श्री प्रधान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडिया वेब डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत पर आधारित सुरमई सवेरा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जावेद खान।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे समन्वित रूपक कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 9 बज चुके हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे विशाल भारद्वाज की आवाज में। गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमज़ोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खान पान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खान पान कैसे

हिस्सा है, उनकी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पलोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो

0: देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जवान।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय

हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार छत्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या का राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाला, जो कि एस बी वर्तक लिखित

नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राज कमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने, चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियंवद की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: संस्कृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने किसानों से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग न करने और मिट्टी की जाँच के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिले की कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 100% पूरी करने और ई विकास टोकन प्रणाली की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रायसेन में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने ग्राम सुरई से लगे वन क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 35 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 35,000 पौधे रोपे जा रहे हैं, जिनमें सागौन और मिश्रित प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर इन दिनों बाघ का विचरण देखा जा रहा है। वन विभाग ने आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों से किला पहाड़ी के आसपास न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम बाघ की लगातार निगरानी कर रही है। मानव वन्य प्राणी टकराव से बचाव के लिए सतर्क हैं। उप मंडलाधिकारी ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण को लेकर भी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर रायसेन जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज और सिलवानी में शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 18 जून तक चल रही है। 10वीं पास विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का

0: स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गईं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत महेश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 10:05 हो चुके हैं श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम आपकी पसंद का।

आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आपकी पसंद में। श्रोताओं, ये कार्यक्रम जिसमें होती हैं आपकी पसंद के गीत, आप सभी के नाम जो हमें मैसेज करते हैं और खत लिखते हैं। तो ये कार्यक्रम अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको बेसब्री से इंतज़ार है अपनी पसंद के गीत सुनने का। तो सबसे पहला गीत हम सुनवा रहे हैं बूढ़ी बालाघाट से, जो हमें हत मिला है सुरेश पाचे, संजय नाग, प्रेमदीप दादरे, किशोर भालाधरे, रवि मेशराम, सुनील प्रभुदयाल और सैयद से। इन्होंने सुनना चाहा है हैप्पी न्यू ईयर, इस फिल्म का गीत। और इस गीत में आवाज़ है विशाल शेखर, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। तो चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे श्रोताओं के पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूल भुलैया 3, इस फिल्म का गीत जिसमें आवाज़ थी आदित्य और तुलसी कुमार की। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली थी नवा टोला सालेकसा से हरिश्चंद्र मड़ावी, सुभाष, विशाल, विलास, कानूबाई और सरिता मड़ावी की। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा था ये प्यारा सा गीत। अगला फरमाइशी गीत हमें सुनने को मिला है खत के माध्यम से, वो है सिलसिला फिल्म का। इस फिल्म में आवाज़ है किशोर कुमार की, लता मंगेशकर की और संगीत शिव हरि का है। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इस गीत के लिए फरमाइश आई है हमें इन प्यारे से श्रोताओं की, जिनके नाम हैं धनवंता वाहने, वनीता वाहने, राहुल, अतुल, स्नेहा, शिक्षा वाहने का। ये रहने वाले हैं सिरपुर गोंदिया महाराष्ट्र से और इन्होंने सिलसिला फिल्म का गीत सुनना चाहा है। तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया खत लिखने के लिए और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला खत जो हमें मिला है बिरसी कामठा से। लिखने वाले हैं अशोक पहरेले, रोहित मोहित, पूजा पहरेले, रविंद्र पहरेले एवं इनके समस्त परिवार गण पहरेले। इन्होंने सुनना चाहा है क्रैक मूवीज का ये गीत, जिसमें आवाज़ है विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की। गीत और संगीत तनिष बागची का है। तो आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं क्रैक फिल्म का ये गीत।

रूही चौधरी, काव्या चौधरी और तक्ष चौधरी, साथ ही चौधरी फैमिली जो रहने वाले हैं गोरेगांव महाराष्ट्र के, उन्होंने सुनना चाहा है ये वाला प्यार संगीत। फिल्म का नाम हम बताएंगे, लेकिन पहले सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

गोरेगांव महाराष्ट्र से चौधरी परिवार ने सुनना चाहा था ये गीत था वीर जारा फिल्म का, जिसमें आवाज थी लता मंगेशकर रूप कुमार राठौर की, संगीत मदन मोहन का था और जावेद अख्तर के बोल थे।

स्त्री टू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे पवन सिंह, सिमरन चौधरी, दिव्या कुमार, सचिन जिगर की आवाजों में। और इस गीत के लिए फरमाइश आई थी हमें मोतीनगर वार्ड नंबर 32 बालाघाट से। खत लिखने वाले हमारे श्रोतागण थे, उनके नाम कुछ इस प्रकार है।

अशोक मंडेलकर, जाहिर कुरैशी, राधेश्याम पारधी, संजू मरे, विमल मरकाम, योगेश रामटेके, राजेश रामटेके, इनकी फरमाइश पर स्त्री टू फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया।

चित्रगुप्त नगर बालाघाट से इस गीत को सुनना चाहा था चंचल बोथरा, हेमलता बोथरा और पंकज उमंग और समस्त बोथरा परिवार ने। साथ ही इस गीत के लिए हमें और एक खत मिला था, वो है नर्मदा नगर बालाघाट से प्रमोद डोंगरे, नंदा खांडेकर, राजीव पटले, वाणी और संध्या, मेघा, रीता और जीविका का। इन्होंने सुनना चाहा था बॉडीगार्ड फिल्म का गीत जो हमने अभी आपको सुनवाया श्रोताओं, जिसमें आवाज़ थी राहत फतेह अली खान की और श्रेया घोषाल की। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया खत लिखने के लिए। ऐसे ही खत लिखते रहिए और अपनी पसंद के गीत सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, नाम है आपकी पसंद। अगला खत शामिल करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम अगला गीत कौन सा आपको सुनवाने वाले हैं, वो है परम सुंदरी। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं जिसमें आवाज़ है सोनू निगम, कृष्णकली शाह की। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है हमें गार्गी मेश्राम, हर्षित मेश्राम, गार्यन मेश्राम, संघवी मेश्राम, प्रशंसा मेश्राम और इवान मेश्राम तथा समस्त मेश्राम परिवार से। ये रहने वाले हैं चारगांव पोस्ट रावणवाड़ी गोंदिया महाराष्ट्र के। आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाने वाले हैं ये प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट अपनी पसंद के गीत हमारे साथ।

देवेंद्र राउत, हरिप्रसाद, वंदना त्रिवेणी और बाई साथ ही हिरेश, संजू, मंजू, ये लिखने वाले हैं हत लांजी बालाघाट से। और इन्होंने लिखा है कि ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही इसे सुनते हैं और हत भी लिखते हैं, हमारा खत शामिल करने के लिए शुक्रिया। इसके पहले भी इन्होंने खत लिखा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने पसंद से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और खत लिखते हैं। इन्होंने सुनना चाहा है बागी 4 फिल्म का गीत गुजारा, जिसमें आवाज़ है जोश परंपरा टंडन की। तो चलिए सुनते हैं श्रोताओं, इन श्रोताओं के अनुरोध पर ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने वाले हैं रावण फिल्म का गीत, और इस गीत के लिए फरमाइश आई है हमें देवरी से। देवरी लिखने वाले हैं दिनेश, वेदांत, प्रकाश, शरद, आशाताई, सुहानी, अजय, संतोष कुमार और अजय प्रसाद ने। इन्होंने सुनना चाहा है रावण फिल्म का गीत, तो हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं के पसंद पर रावण फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत था रावण फिल्म से, जिसमें आवाज थी नंदिनी श्रीकर की, संगीत विशाल शेखर का था। और इस प्यारे से गीत के लिए हमें अनुरोध मिला था कोसमी बालाघाट सरेखा से उषा यादव, संजना यादव, दुर्गा और शीतल का। आप श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद खत लिखने के लिए और अपने पसंद के गीत सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ऐसे ही खत लिखते रहिए श्रोताओं, और सुनते रहिए अपने पसंद के गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में, क्योंकि ये तो था श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हम ऐसे ही बने रहेंगे आपसे, आपके साथ, और सुनवाते रहेंगे आपके पसंद के गीत कार्यक्रम में। हमें बस खत लिखते रहिए, मैसेज करते रहिए और हमसे रोजाना मिलते रहिए। यूं ही बने रहिए आकाशवाणी बालाघाट के साथ। मैं हूं गीता मिश्राम, अनुमति दीजिए आज के इस अंक से। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपके अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

प्यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

साइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: ये सुनिए, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलग-अलग कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
1: तो
0: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूं और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा, और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मकता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: लगता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब
1: गया,
0: रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है।

0: करने पर हूँ।
1: जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
2: क्या बात।
1: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
2: वाह क्या बात है। ये सुबीर सेन की आवाज है, सुबीर सेन जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: ये
1: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
0: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्ते।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी, मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के
2: मैं कुछ पूछूंगा।
3: हाँ
2: हैं?
3: हाँ
2: अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो

0: आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
1: छोटे जी, बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ, कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
0: हो जाता है, हो जाता है सब।
1: जैसे
0: तो आप तो जानबूझ करके आए,
1: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, तो गायक बन गया।
0: गायक बन
1: गया, ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
0: अच्छा,
1: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं ये कोई तमन्ना नहीं थी।
0: अच्छा,
1: साहित्य में जरा बनाना चाहता था।
0: ठीक ठीक।
1: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था, कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
0: वाह।
1: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया, और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
0: ठीक।
1: जिसकी जगह कम होने लगी, और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था आखिर, सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
0: जी।
1: तो उस हल्के में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी कलम हमने कान पे रखी है, हमसे भी कुछ लिखवा लो।
0: ठीक।
1: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
0: अच्छा।
1: बिमलदा से आप शायद नाम सुना के
0: होंगे। बिमल राय।
1: जी हाँ।
0: अच्छा।
1: उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे, और उनसे मिले। वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
0: कौन सा गाना?
1: बंदनी में मोरा गोरा अंग ले ले।
0: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
1: अब छोड़े जी, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था। और वो गाना लिखा, और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला।
0: जी।
1: और मैं क्योंकि बेरोजगार था, और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें,
0: जी
1: लगा कि ये कुछ भूखा है।
0: जी।
1: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
0: जी।
1: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहाँ दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
0: सही बात, सही बात।
1: तो उन्होंने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
0: जी।
1: और बड़ा अच्छा मौका था,
0: तो
1: जाहिर है हो गया,
0: पहुंच गए, हो गया।
1: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
0: जी
1: कि लेखक की जगह अपनी है, लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं है।
0: अच्छा।
1: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में, वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
0: अच्छा, हाँ, तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा।
1: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा,
0: सही बात, सही
1: बात। तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
0: ठीक ठीक।
1: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है, तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
0: मतलब फिर आपने निर्देशन भी।
1: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने सीखना शुरू किया, और लिखते रहे साथ में।
0: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
1: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है, और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
0: अच्छा, तो देखिए, इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
1: जा,
0: तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
1: जी हाँ, दोनों शख्सियतें।
0: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ
1: जी,
0: लेखक और निर्देशक?
1: वैसे छोड़े जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
0: अरे आप ही लोगों से साथ बैठ के
1: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
0: होता है ना।
1: जी हाँ।
0: अच्छा,
1: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझमें,
0: जी
1: वो पकड़ लेता है। इसलिए जी हाँ।
0: अच्छा,
1: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है, और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक।
0: अच्छा,
1: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, तो गुलजार भाई, अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए, तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है, जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर?
1: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
0: अच्छा।
1: और रंगारंग है।
0: हाँ।
1: और अंग्रेजी में।
0: अच्छा।
1: फैसिनेटिंग है।
0: हाँ भाई,
1: बहुत फैसिनेटिंग है।
0: अच्छा,
1: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए, कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस

0: कलम बंद कर लिया
1: जी।
0: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूं और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूं उसके लिए मैं अकेला नहीं हूं।
1: अच्छा।
0: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
1: हाँ
0: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे कर्मचारी,
1: जितने कर्मचारी
0: टेक्नीशियंस हैं जितने
1: सभी उसमें शामिल,
0: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो वो बात बनती नहीं,
1: बात नहीं बनेगी।
0: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जोड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए तब बात बनती है।
1: सही बात, सही बात।
0: तो इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
1: सही बात।
0: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है।
1: हाँ।
0: उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती हैं, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल
1: हाँ।
0: जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में जुड़े हुए हैं,
1: एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना,
0: बहुत चर्चा।
1: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
0: सर, इसके विचार दो तरह से हैं।
1: पहली तरह
0: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा।
1: अच्छा।
0: तो जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, वही लेखक का ख्याल
1: जी,
0: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है,
1: जी
0: तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
1: अच्छा अच्छा
0: और वो प्रोपगेट करते रहे हम।
1: अच्छा।
0: और वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल
1: अच्छा,
0: जाओ।
1: ये चीज।
0: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
1: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
0: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। अब वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
1: जी,
0: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
1: जी
0: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
1: जी,
0: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि नहीं।
1: वाह वाह,
0: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: वाह।
0: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
1: जी,
0: वो बनावटी रहेगा।
1: हाँ ठीक।
0: और
1: ठीक।
0: ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं, जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो
1: जी,
0: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में
1: जी,
0: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
1: अच्छा,
0: शायद
1: अच्छा,
0: हो कहीं, मेरी
1: अच्छा,
0: नजर से नहीं गुजरा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
0: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है। आपसे आज की मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
1: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्में मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे, तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों का क्या विचार होते हैं?
0: खास तौर पे ताशकंद में
1: जी
0: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
1: अच्छा।
0: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
1: अच्छा।
0: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
1: हाँ,
0: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे एक तो राज कपूर साहब
1: जी,
0: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से
1: यहाँ पे। वाह।
0: और जो नए अदाकार वहाँ गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
1: वाह वाह।
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहाँ दिखाई गई, जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा।
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
1: जी,
0: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
1: अच्छा।
0: या
1: अच्छा।
0: उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
1: अच्छा।
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी करामद है।
1: बिल्कुल करामद है। और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
1: हाँ, है ना।
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती

0: में तो ये है कि हर फिल्म
1: जी
0: एक बड़ा मकसद ले सकती है,
1: ठीक
0: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
1: जी
0: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं,
1: ठीक
0: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी या
1: जी
0: एक बार तो ये महसूस होने देंगी कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची
1: वाह क्या बात कही।
0: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपके कौम क्या है, कम से कम
1: ठीक
0: ये तो जान लें,
1: ठीक
0: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूं और
1: जी
0: ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो
1: जी
0: हिंदुस्तानी हैं
1: हाँ
0: और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो
1: ठीक
0: होना चाहिए,
1: ठीक
0: और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि
1: जी
0: बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है,
1: जी
0: और कर कितना रही हैं उसमें ये कि कोशिश बहुत है
1: अच्छा
0: लेकिन पहुंच कम हुई है,
1: हाँ ठीक है तो
0: मतलब
1: कोशिश
0: उतनी
1: तो
0: नहीं हुई
1: हाँ
0: जितनी होनी चाहिए थी,
1: हाँ
0: और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं,
1: ठीक
0: उम्मीद
1: है
0: है होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था
0: जी
1: और
0: हाँ
1: आप कवि हैं शायर हैं
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाएं आपकी आपकी जबानी तो क्या हर जाए।
0: छोटे जी, हर्ज तो कुछ नहीं
1: जी
0: बल्कि अच्छी बात है,
1: अच्छी बात है ना
0: हाँ
1: आप
0: अगर
1: सुना
0: उन्हें
1: के
0: अच्छी लगे ये
1: अरे लगेगी साहब
0: तो
1: जरूर लगेगी।
0: मैं नज़्म में आपको सुना देता हूँ
1: अच्छा
0: और सुनने वालों तक भी पहुँच जाएगी।
1: हाँ पहुंचे रहिए।
0: वो जो शायर था
1: अच्छा वो जो शायर था
0: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए, वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें,
1: वाह
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें, और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते,
1: वाह
0: और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था, हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था,
1: वाह वाह वाह वाह
0: हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था, चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से
0: जी
1: भी और
0: मैं
1: विविध
0: भी बहुत
1: भारती की भी
0: मशहूर
1: ओर
0: हूँ
1: से।
0: आपका,
1: और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं है
0: हाँ फिर मिलेंगे,
1: ना
0: फिर
1: मिलेंगे।
0: आएंगे, फिर आएंगे,
1: अच्छा नमस्कार
0: और
1: धन्यवाद।
0: इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
2: मुसाफिर हूँ यारो
3: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था, और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज

0: बैठी शो कर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।

0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुने यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: योगेश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी, गुजर जाए दिन दिन
0: दिन की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग, आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की जो इबारत है वो है, कितना अच्छा हो कि आ जाए रिमझिम फुहार। बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बूंदों का है त्योहार। बादल की डोली पर आती है बरखा रानी, मन झूम उठता है जब बरसता है पानी। तपती धरती कर रही शिद्दत से इंतजार, कब छाएंगे मेघा, कब होगी बूंदों की बौछार। इस बार सावन ऐसा आए, घटाओं के संग खुशियां लाए। चलो बारिश का त्योहार मनाएं, हम सब मिलकर बारिश के गाने गाएं। आसमां अब के धरती पे लिख दे हरी कहानी, झूम के छाए घटा और टूट के बरसे पानी। अब समझ गए होंगे कि इतने सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम गानों की डोर को तान सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कौन कौन से शब्दों पर आज गाने हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि आज बारिश के इंतजार की बात है और इतने सारे शब्द जिन पर बहुत सारे गाने हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात जो हमारी और आपकी, हम सबकी बात है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहला गाना जो है वो गाइड फिल्म से आ रहा है। गाइड फिल्म किसके उपन्यास पर बनी थी, एक तो ये बात, दूसरी देवानंद और वहीदा रहमान के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में।

जरा सोचिए कि बिल्कुल जरा सा, 2 मिनट का ये गाना है, लेकिन ये गाना बारिश के लिए हम सबकी पुकार को एक तरह से आवाज देता है। और बहुत सारे श्रोताओं की आज की इबारत को लेकर कमेंट्स आए हैं, और उसके अलावा हमारे सवालों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, और ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसे गाइड फिल्म का गाना सुना, अल्लाह मेघ दे, इसी तरह का एक और गाना था, आपको बताना है फिल्म का नाम।

पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना है। और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, आई बहार आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाज़ा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है। बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है। मिट्टी की पहली सोंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल

बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है और हालत खराब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना ये है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाओ सा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा

टापाउस आला मोठा जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीले सफर की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपहले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना। और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज़ कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नज़र आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नज़र आते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है। बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है।

बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है, वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते और जब वो चली जाती तो उसे रोकते। बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया। और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया। और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनके नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं और वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा कर

करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं, ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती हैं कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर गरस

रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है, यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज, फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है। और आपको संगीत

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं

लोहे का तवा उलट कर रख देती थी, क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें दाल बाटी चूरमा और अन्य चीज़ें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

वही बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सांवरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसों भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं।

0: कार्यक्रम में और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहें फैला लें और जितना चाहें सिकोड़ लें। चाहें तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है, पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो मुड़ती है, कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है, पर व्यर्थ। संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहां न पूर्णता है न अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है।

हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते। उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक से पहले ब्रिक्स वाटिका में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक का संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम।
1: इस ब्रिक्स का ये सम्मेलन जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है, ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाएगी।
2: मैं आप सभी के माध्यम से नीट के सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूँ, भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है।
0: प्रवास के दौरान आज श्री प्रधान ने शूटिंग एकेडमी से खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं सूरजनगर में भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह विभाग की महत्वपूर्ण आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना।

संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुदवास, सोहतकला और सुसनेर में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: हाँ, ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियां जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम

0: चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण

0: योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतरिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेट

0: की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना, और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मनचाहे गीत। मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत
2: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मनचाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मंच है गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: जो शहीद हुए हैं।
1: मंजय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता, और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण की बोल, चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: को बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मनचाही गीत।
3: मन चाहेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार।

0: दासी?
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी?
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी?
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच
0: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
2: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
2: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुलदेवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, यह संभव नहीं। यह मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग हैं। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते, माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
0: नहीं महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गंधारी देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सत्य। ओह, असहनीय है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कांधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जान का सुख भी।

0: महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत हुआ।
1: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा, क्यों उचित है ना?
0: सर्वथा उचित है महाराज, वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
1: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
0: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
1: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
0: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी, यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
0: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
1: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
0: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
1: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था, नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
0: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
1: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
0: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक,
1: काश मैं देख सकती। किस पर किया है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज ध्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुन की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधू के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित हैं।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।

0: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस, टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
1: होया था नस नस में अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
0: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार का, बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान

0: कोरियोग्राफ किया था वैभवी मोचन ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
1: वो
0: था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झनकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: हाँ
1: है
0: करेक्ट,
1: ना,
0: आर डी बन
1: आर डी
0: का
1: बर्मन साहब का।
0: था, हाँ
1: और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट
1: वही ताजगी है, जबकि
0: करेक्ट
1: वो उनकी साज से निकले होंगे।
0: करेक्ट
1: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना
0: हाँ
1: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूं
0: हाँ
1: आपने।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर, समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वाज मोर ऑफ अ फील, फील का गाना था।

जो एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही,
0: किस तरह के? क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हम हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है. क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था.
0: अच्छा अच्छा
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ

0: में संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा फिल्म।
0: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जो मैंने सुना करता था माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना

0: पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस कर तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक। और फिर मैं सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज़ ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक यू नो एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार यू नो थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको यू नो फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो आप जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले, क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है। आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में चल

0: बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए।

0: एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते
0: करेक्ट
1: हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है
1: हाँ
0: जो मैंने नौरा के साथ किया, वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके
1: कौन
0: हैं।
1: सा
0: भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना।
1: अजनबी?
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं? मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी
0: दिखती है।
1: दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो कि परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: पा। सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: Yusuf, Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं आप.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बींग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अयर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अयर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जमे बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो. और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो उसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी. वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं। अब है वक्त युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम युवाणी के आज के इस ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं हूं आपकी हमसफर ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोता मित्रों, घड़ी अब टिक टिक चालू कर दी है। कार्यक्रम युवाणी के अगले 30 मिनट आप और हम रहेंगे साथ साथ। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज आज की इस बात के साथ, जो है जीत और हार से। श्रोता मित्रों, जीतने की इच्छा सभी में होती है,

जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। श्रोताओं, वाकई हम अगर मनन करें तो ये बात समझ आती है कि बार बार आखिर हम क्यों सफलता से दूर रह जाते हैं, क्यों हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और अंततः हताश होकर हार मान बैठते हैं। श्रोता मित्रों, हम अपने लक्ष्य में सफल तो होना चाहते हैं, पर क्या हम इसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं? श्रोताओं, बिना परिश्रम के सफलता हासिल करना बेहद कठिन है, इसलिए जरूरी है कि हम पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के साथ अपने लक्ष्य को भेदने का अथक प्रयास करें। निश्चित ही हमें जीत जरूर मिलेगी।

0: पब्लिक स्कूल सीबीएसई से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लाल बर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: श्रोता साथियों, हर रोज की तरह आज भी दिन ढल रहा है। पक्षी अपने साथियों के साथ कलरव करते अपने घर की ओर लौट रहे हैं। हम मनुष्य भी कुछ इसी तरह अपनी रोजाना की दिनचर्या को निभाते हुए अपने दैनिक कामों को अंजाम देकर अपने घर की ओर पहुंचते हैं। श्रोता मित्रों, ये प्रकृति और हमारा बड़ा ही गहरा संबंध रहा है। हमारी पृथ्वी संभवतः ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है। इसमें अथाह सौंदर्य है और इस सौंदर्य को संजोने की जिम्मेदारी हमारी है। साथियों, अब मौसम करवट ले रहा है। तपती गर्मी के बाद अब मानसून दस्तक दे रहा है। बारिश की बूंदों के साथ अब धरती पर सबके लिए राहत लिए आ रही है, खुशियों को साथ लिए आ रही है। तो आइए हम भी करते हैं स्वागत इस मौसम के बदलाव का इस गीत के साथ।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोता मित्रों, हमने मौसम का स्वागत तो किया, लेकिन इस बदलते मौसम में हमें अपने और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मौसम में बदलाव हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। अगर इस बदलाव से हम खुद को सुरक्षित नहीं रख पाए तो हम न केवल तकलीफ में रहेंगे बल्कि अपने कामों को भी सही समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम अनावश्यक तनाव में घिर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो खुद को इस मौसम के बदलाव के साथ स्वस्थ रखें। साथियों, बदलते मौसम में जो हम पानी पीते हैं या हम उस जिस पानी का उपयोग करते हैं उसे उबाल कर उपयोग करें, उबाल कर पिएं। अगर आप कहीं बाहर हैं, रास्ते में हैं या और अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, उस बीच अगर आंधी तूफान या बारिश होने लगे तो ऐसे में किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। कोशिश करें कि किसी पेड़ के नीचे आप ना रुकें। जैसे ही बारिश थम जाए वैसे ही आप अपने गंतव्य के लिए निकलें, क्योंकि श्रोता मित्रों, मौसम आंधी तूफान बारिश के साथ आता है। ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि कोई वृक्ष की डालियां टूटकर नीचे गिर जाती है। हो सकता है अगर हम उस वृक्ष के नीचे हों और वो डाली गिर जाए तो हमें किसी दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े, कोई अप्रिय घटना हमारे साथ घटित न हो, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो श्रोता मित्रों, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, हम ये आशा करते हैं। तो आइए अब आप और हम मिलकर आनंद लेते हैं इस तराने का और शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोताओं, बातों और गीतों का ये सफरनामा आप तय कर रहे हैं अपनी हम सफर ममता कटरे के साथ। और सफर का आनंद तो तब आता है श्रोताओं, जब हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें और साथ ही अपनी कुछ मानवीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। अब जब बारिश का मौसम आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आप प्रकृति के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाएं।

इस बारिश कम से कम कुछ पौधे अवश्य लगाएं, साथ ही उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें। ये प्रकृति हमारी लाइफ लाइन है साथियों, जिसे संजोकर रखना हमें बेहद जरूरी है। इस मौसम के बदलाव के साथ जिस तरह हम खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह हम चाहेंगे आप इस धरा को भी हरा भरा रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम सबका प्रयास हमारी भावी पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देने में मदद कर सकता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी में आइए अब हम आपको देते हैं रोजगार सूचना। बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद है 5,000। शैक्षणिक योग्यता है स्नातक और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस के पदों के लिए हमने भी आपको जानकारी दी थी, एक बार फिर सुन लीजिए। पदों की कुल संख्या थी 5,000, शैक्षणिक योग्यता स्नातक। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 और बैंक की वेबसाइट है bankofbaroda.bank.in।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम युववाणी का सफर बस अब यहीं तक। अनुमति दे अपनी रेडियो फ्रेंड ममता कटरे को और स्वीकार करे हमारा स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का मन भावन कार्यक्रम युववाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। कुछ ही पल में हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपकी रेडियो फ्रेंड ममता कटरे का। आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज फिल्म भागम भाग के इस तराने के साथ, जिसे समीर के गीत को संगीत में पिरोया है प्रीतम ने और आवाजें हैं कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म बादशाह का ये तराना। अरिजीत सिंह की आवाज, समीर का गीत, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला तराना आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक और वसुंधरा की आवाजों में। फिल्म लगान के इस तराने को संगीत दिया है AR रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आवाज़ अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की। फिल्म अलबेला के इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं चांदनी चौक टू चाइना, इस फिल्म का तराना। रजत अरोरा का गीत, शंकर एहसान लॉय का संगीत और आवाजें हैं शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। अब है वक्त दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार लेकर कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट की बहार। आपके साथ हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, आज की इस शाम आप और हम हैं साथ साथ, तो मिलकर आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के इस सफर की ओर। श्रोताओं, हर बढ़ते कदम के साथ एक अच्छी सोच होती है और यही अच्छे विचार जीवन को बुलंदियों तक ले जाते हैं। ऐसे ही सकारात्मक सोच रखने वाले और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के सुविचार को आज हमने शामिल किया है, जिनके अनुसार दूसरों को सुनाना या दूसरे को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत रखिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनना लोग मिन्नतें करें, उसके लिए आपको सुनने के लिए लोग तरसते रहें। जी हाँ साथियों, जीवन को इतना शानदार बनाइए कि आपकी याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए और हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाए। और साथियों, फिर हमें जिंदगी मिली भी तो है हंसकर जीने के लिए, इस गीत की तरह।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
3: श्रोताओं, आइए कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के आज के अंक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस शख्सियत की जो न केवल गीतकार हैं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे, और आज है उस महान हस्ती का जन्मदिन। जी हां श्रोता मित्रों, हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार प्रेम धवन की। वे मूल रूप से कवि और कोरियोग्राफर थे, साथ ही गीतकार, कुशल रतक और निपुण संगीत निर्देशक भी। जन्म हुआ 13 जून साल 1923 को हरियाणा जिले के अंबाला में। उनके पिता जेल अधीक्षक थे और इसी नौकरी के चलते प्रेम धवन को अपने परिवार के साथ भारत में काफ़ी यात्रा करने का मौका मिला, जहां उन्हें विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने लाहौर में अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की, जहां साहिर और इंद्र कुमार गुजराल के उनके सबसे अच्छे दोस्त बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुकाव रखते रहे और इसके सक्रिय सदस्य भी बने। वे साल 1940 के दशक में बॉम्बे, यानी जो अब मुंबई है, आए और

IPTA में शामिल हुए। उन्होंने पंडित रविशंकर से संगीत और शांति राय वर्धन से नृत्य की शिक्षा ली। वे एक सच्चे देशभक्त थे, जो उनके गीतों में झलकता है।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: श्रोताओं, प्रेम धवन ने 1946 में संगीतकार खुर्शीद अनवर के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने पहली बार साल 1946 में फिल्म धरती के लाल के लिए गीत लिखे। संगीत पंडित रविशंकर ने दिया था इसमें। बाद में वर्ष 1948 में फिल्म जिद्दी के लिए उनके गीत लोकप्रिय हुए और उन्होंने कई संगीतकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे एक प्रशिक्षित नर्तक भी थे और साल 1949 में फिल्म सिंगार में कुक्कू के साथ नृत्य किया। बाद में उन्होंने दो बीघा जमीन के गाने हरियाली, सावन ढोल बजाता आया को कोरियोग्राफ किया और डांस भी किया। उनकी कोरियोग्राफी प्रतिभा को दर्शाने वाली और भी फिल्में आरजू साल 1950 में, नया दौर में गाना उड़े जब जब जुल्फें तेरी और गूंज उठी शहनाई रही। अपनी कला का प्रदर्शन इन सभी फिल्मों में उन्होंने ऐसा किया कि दर्शकों के दिल पर छा गए। उन्होंने कुछ और फिल्मों के लिए कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। उनका अद्भुत संयोजन बेमिसाल रहा। उनके शब्द हमेशा एक उपयुक्त और सटीक धुन में डलकर संगीत की उत्कृष्ट कृति का रूप ले लिए।

0: कोई ना
1: कि मैं कुफर तो लिया
0: कोई ना
1: कि मैं जहर को लिया
0: कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना।

0: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
1: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
2: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था,
1: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
3: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए, नए जमाने
1: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: और उनको भी सिखाओ।
6: श्रोताओं, प्रेम धवन एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अपने गीतों को पूरी शिद्दत महसूस करने के बाद लिखा करता था। फिल्म एक साल में नायिका नायक अशोक कुमार को चाहती है। जब नायक महसूस करता है और लौट कर आता है तब वो कैंसर की मरीज होकर मृत्युशैया पर है। इसे अपने दिल की गहराई में उतारकर उन्होंने रचा। सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, ले लेकर के हार फूलों का आई तो ही बहार, नजरें उठा के हमने ही देखा न एक बार, आंखों में अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया। प्रेम धवन भावुक इतने थे कि अपनी लोरी तुझे सूरज कहूँ या चंदा मेरा नाम करेगा रोशन में रचते हुए कई बार रो पड़े।

नया दौर फिल्म का सुपरहिट सदाबहार गाना है उड़े जब जब जुल्फे तेरी। इसके डांस स्टेप्स में जो अदाएं हैं उनकी दीवानगी आज भी बरकरार है। इस गाने की कोरियोग्राफी प्रेम धवन की है। दो बीघा जमीन का गाना हरियाली सावन ढोल बजाता आया। इनके अलावा 1950 की फिल्म आरजू, फिर धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई और वक्त जैसी फिल्मों में भी उनका डांस डायरेक्शन दिखाई दिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी प्रेम धवन का नाम अपने समय के दूसरे गीतकारों की तरह लाइमलाइट में नहीं रहा। इसकी वजह ये थी कि वो खुद को दिखावों से बहुत दूर रखते थे। जब भी मौका मिलता प्रेम धवन सीमा पर अपने फौजी भाइयों से मिलने जरूर जाते थे। साल 1970 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 7 मई 2001 को वो खामोशी से इस दुनिया को रुखसत कर गए। प्रेम धवन ऐसे ही गीतकारों की सूची में शामिल है जो चिरकाल तक अपने दर्शकों के दिल में राज करेगा।

0: श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा कि ली जाए आपसे विदा, इस वादे के साथ कि कल एक नए अंक को रंगीले अंदाज में लेकर आपसे होगी पुनः भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे को, और स्वीकार करें हमारा स्नेहिल नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब है वक्त कार्यक्रम सुगम संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नजराना हम लेकर आए हैं तलत अजीज की आवाज में।

श्रोताओं, जफर काजमी की कलम को आइए सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में। एक बार फिर सुन लीजिए शायर जफर कलीम की कलमबद्ध इस गीत को, आइए सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में।

श्रोताओं, आइए अब लुत्फ उठाते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में अनवर मिर्जापुरी की कलम का। आवाज दी है तलत अजीज ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब हम आपको आज की सभा के शेष प्रसारित और रिले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:21 पर आपके लिए होगा कार्यक्रम चौपाल। 7:30 पर किसान साथियों से जुड़ी अहम कड़ी कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे। 8:30 पर कार्यक्रम पॉप म्यूजिक लेकर हम हाजिर होंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। 9 बजे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकते हैं। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर एक बार फिर आप आनंद लीजिएगा विविध भारतीय प्रसारण सेवा के विविध कार्यक्रमों का। रात्रि 10:30 पर सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये तो थी आज की सभा के शेष प्रसारित और रिले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का आप आनंद लीजिएगा कल सुबह 6:05 पर। विचारों का मंथन कार्यक्रम चिंतन लेकर हाजिर होंगे सुबह 6:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ। सुबह 6:50 पर लुत्फ उठा सकते हैं आप कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत का। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का वक्त होगा सुबह 7:20। समाचार प्रभात हम रिले करेंगे आकाश

0: The initiative aims to strengthen supervision and invigilation processes for NTA examinations and to ensure the smooth, secure and standardized conduct of offline pen and paper-based tests. The NTA said that the course is designed for examination functionaries, particularly center superintendents and invigilators who are involved in conducting NTA examinations, including NEET UG. The five-day historic BRICS Agriculture Conference held in Indore, Madhya Pradesh came to a close today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmer welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and digital agriculture. And moving on to sports and cricket, Afghanistan were 132 for 3 in 14.3 overs against India in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamsala when reports last came in. India won the toss and elected to field first. And that is the end of this news bulletin.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
2: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु, सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनियमितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की ये बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। श्री चौहान ने बताया कि सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर ब्रिक्स देशों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और गंभीरता है।
5: ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी चर्चा हुई है। फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।
4: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना है। श्री प्रधान ने यहाँ मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय वो था जब देश को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूँ इतना पड़ता था, और आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है।
6: आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की आत्म

0: विश्वास की प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अद्वितीय लोकप्रिय जन नेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ उसके तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया।
1: सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सहभागिता की। इससे पहले श्री प्रधान ने आज सुबह राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा लागू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
3: मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 पदों पर भर्ती के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एग्जीबिशन और माइज के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एवं एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 में MP टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश के इवेंट, एग्जीबिशन और माइज सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ये पुरस्कार ग्रहण किया। महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहडोल जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर निवास के पास पुराने RTO कार्यालय की भूमि पर 3.5 करोड़ की लागत से सुविधाओं से युक्त विशेष परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए समर्पित होगा। लगभग 1 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 32 दुकानें बनाई जाएंगी जिसमें महिलाएं अपने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, घरेलू सामग्री और अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। यहां 4 दुकानों के व्यावसायिक परिसर भी बनेगा जिसके किराए से पूरे परिसर का मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की प्रवेशता की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी राजधानी भोपाल में दिन भर उमस

भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में एक निजी संस्था द्वारा विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कल पशु कल्याण समिति, पशु क्रूरता निवारण समिति और जिला गौ पालन गौ संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नवांकुर अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रंडाल पहुंचकर सीड बॉल निर्माण गतिविधि में हिस्सा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न, कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 7:21 हुए हैं। अब है वक्त किसान साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान साथियों को आपके किसान मित्र नरेश सिंह अंधुपे
1: और अपने रेडियो मित्र अजय बैस
2: और मनीषा गोस्वामी का नमस्कार।
0: किसान साथियों, आपने सुना होगा कि हमने किसान वाणी कहा है। किसान वाणी इसलिए कहा है क्योंकि पूरे कार्यक्रम का जो एक वो लिफाफा होता है वो किसान वाणी का है, लेकिन उसके अंदर चंक होता है। तो अभी हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल कार्यक्रम में हैं। तो चौपाल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मनीषा जी को और अजय जी को, और ये आप दोनों आपसे बात करेंगे।
1: बिल्कुल नरेश भी, हम बात करेंगे और बातों बातों में हम देखते हैं कि हम कई सारी जो हमारे किसान भाई अभी बैठे हैं, बात बात में हम उनको ऐसी जानकारी दे देते हैं, योजनाओं की बात करें या कुछ कृषि सलाह हम दे देते हैं, जिससे कि वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आते ही हैं भैया, लेकिन कई योजनाओं का हमारे किसान भाई कैसे लाभ लें, इसके लिए उन्हें कभी कभी जानकारी की आवश्यकता होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई सभी जितनी भी योजनाएं संचालित होती है तो उन योजनाओं का अवश्य लाभ लें। कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और अभी हमारा कार्यक्रम किसानवाणी में इस संबंध में कार्यक्रम भी होने वाला है, सजीव फोन इन कार्यक्रम। और हम किसान भाइयों को बता दें कि हमारी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और एक और योजना है जलवायु अनुकूल खेती योजना। तो इन योजनाओं के बारे में हम किसान भाइयों को बिल्कुल बताना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, और हम देखें मनीषा जी की जो 12 वर्ष हुए हैं, पिछले 12 वर्ष में हम देखें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए काफ़ी सारे प्रयास हुए हैं, और जो अभी आपने योजनाएं बताई वो भी योजनाओं से किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। और 12 वर्ष की उपलब्धि पर जो विभिन्न कृषि विभाग योजनाएँ संचालित कर रहा है, और आज का जो हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम भी है इसी विषय पर है कि कृषि विभाग जो 12 वर्ष में जो किसान समृद्धि के जो 12 वर्ष है जो विभिन्न योजनाएं संचालित है उससे किसान भाई कैसे लाभान्वित लें, क्या क्या प्रावधान है, इसी को लेकर आज हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन मनीषा जी 12 वर्ष में काफी बदलाव हुआ है।

0: हाँ, और इन बदलाव के लिए कई योजनाएं भी परिवर्तित हुई है, और उन योजनाओं का प्रारूप है, जो स्वरूप है, वो बदला हुआ है। तो उन योजनाओं के बारे में भी हमारे जो कार्यक्रम में अभी हमारे जो विशेषज्ञ आएंगे, वो जरूर हमें किसान भाइयों को बताएंगे कि उन योजनाओं का अगर लाभ लेना है तो उसका प्रारूप क्या होगा, उसका एक शेड्यूल कैसा होता है, कि उन योजनाओं से वो जुड़े कैसे, इससे लाभान्वित हो, इस संबंध में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम अपने चौपाल में अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं ये लोकगीत।
1: लोकगीत।

0: किसानवाणी में आएंगे कार्यक्रम में, तो उसका सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो किसानवाणी, और उसका विषय आज यह है किसान समृद्धि के 12 वर्ष संचालित कृषि योजनाएं। और इस विषय पर आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन पर टाइप करना होगा 07632292173। तो इस नंबर से आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे मेहमान होंगे श्री फूल सिंह मालवी जी, जो कि DDA हैं कृषि विभाग बालाघाट में। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव
1: किसानवाणी की ओर।
0: जी,

0: ब्रजलाल तेकाम और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत था। और किसान साथियों, अब इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल का ये अंक हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन
1: हाँ भैया,
0: उसके पहले हम आपको बता दें कि अब जब

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: वेलकम सुन रहे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज है शनिवार और जैसे कि आज शनिवार है और आप लोगों को इंतजार रहता है कि 7 बजकर जो कि हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:32 होने जा रहे हैं और इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई फोन कॉल के माध्यम से अपनी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अपना आपका रेडियो मित्र अजय बैस
6: और मैं मनीषा गोस्वामी
5: और आज हमारे साथ में विषय विशेषज्ञ हैं श्री फूल सिंह मालवीय जी, उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट। जिस तरीके से किसान भाई हम देख रहे हैं कि किसान समृद्धि के 12 वर्ष हो चुके हैं और हम देखते हैं कि 12 वर्ष में चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विभिन्न जन कल्याणकारी कृषि योजनाएं चल रही हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम कृषि को कैसे बेहतर बनाएं, आधुनिक तकनीक से जोड़ें। मालवीय सर, सबसे पहले तो ये जो विशेष कार्यक्रम है हमारा, क्योंकि ये 12 वर्ष पर चाहे किसान कल्याण विभाग हो, पूरा देश में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं और आज भी मनीषा जी आज हमारे इस कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम में आज
6: बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
5: स्वागत हम करना चाहते हैं आपका।
7: धन्यवाद आपको।
6: बिल्कुल, और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर जिस प्रकार से आज हम जो बात कर रहे हैं किसान समृद्धि के 12 साल और संचालित कृषि योजनाओं के बारे में, ऐसी कई योजनाएं हैं सर जिससे कि हमारे किसान भाई लाभान्वित तो हो रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का वो लाभ लेने के लिए सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं?
7: बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है।

0: जी
1: और सब हमारे बालाघाट जिले के खास तौर से किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
0: बिल्कुल
1: के माध्यम से इस वर्ष हम लोग जो है किसान कल्याण वर्ष मनाने जा रहे हैं। और ये पूरा वर्ष भर कृषि और खेती बाड़ी से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के नवाचार भी होंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपने सवाल किया
0: जी
1: कि किसान भाई को कैसे योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, तो हमारा जो कृषि विभाग का एक पोर्टल है जिसको एमपी किसान पोर्टल 2.0 के नाम से
0: जी
1: जानते हैं, एमपी किसान पोर्टल पर जाकर किसान भाई अपना पंजीयन कर सकते
0: जी
1: हैं। उसमें योजनाओं का नाम आता है, घटक का नाम आता है,
0: अच्छा
1: और उसमें जिस योजना से संबंधित है, जिसके लिए वो एलिजिबल है, जिसके लक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध हैं, उसमें वो किसान भाई आवेदन कर सकते हैं।
0: जी
1: वो खुद भी कई बार नहीं कर सकते, असमर्थ भी रहते
0: जी
1: हैं, तो हमारे जो मैदानी अधिकारी हैं जिनको हम कृषि विस्तार अधिकारी बोलते हैं,
0: जी
1: कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके
0: बिल्कुल
1: और एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन अपना करवा सकते हैं किसान भाई
0: बिल्कुल
1: और आवेदन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: इसी के साथ साथ जो हमारी कृषि यंत्र की जो हमारी स्कीम है, जिनमें सुपर सीडर मशीन
0: जी
1: है, सीड ड्रिल मशीन
0: सीड ड्रिल
1: है, बेलर मशीन है, तो जो भी कृषि यंत्रीकरण की मशीन का किसान भाई लाभ लेना चाहते हैं,
0: अच्छा
1: अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं,
0: जी
1: उसके लिए भी हमारा पोर्टल है और
0: उस
1: उस पर भी किसान भाई जाकर
0: अच्छा।
1: तो उसको जो है कृषि यंत्रीकरण का जो पोर्टल है
0: सर हम आपको
1: जी
0: बीच में रोकना चाहेंगे सर, क्योंकि इसी बीच हमारे किसान साथी हमसे बिल्कुल जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ हेलो हाँ
1: आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना परिचय बताएं।
2: नमस्कार,
1: नमस्कार
2: दिलीप कुमार भगत बोल रहा हूँ मैं ग्राम अमई से।
1: जी, स्वागत है आपका दिलीप जी। क्या जानना चाहते हैं आज हमारे बीच में हमारे
2: आज के जो विशेषज्ञ उनको नमस्कार। सर ये आज का विषय क्या है?
1: विषय ये है कि 12 वर्ष में जो हमारी उपलब्धि रही है, नए नए नवाचार हो रहे हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के, तो इसी से संबंधित कोई प्रश्न हो आपका।
2: सवाल ये है कि अभी कोई सरकार की योजना चल रही है अभी कृषि चालित यंत्र के संबंध में, ऐसी कोई तो बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आपके जो सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ श्री फूल सिंह मालवीय जी हैं, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मुखिया, आज हमारे बीच में आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो आप सर से जवाब सुनिए।
0: किस बारे में आपका सवाल था, मैं ऐसे ही सुन
1: ये
0: नहीं पाया।
1: योजनाएं कह रहे हैं कि कुछ खास योजनाएं अभी चल रही हैं क्या?
0: अच्छा ठीक है, हमारी सबसे मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा
2: हाँ सर
1: संचालित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के, एक तो ये बिल्कुल अभी 1 साल पुरानी ही हमारी सरकार की योजना है, और इसमें खास तौर से हम ऐसे किसान भाइयों को चुनते हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, परंतु अभी जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो क्लस्टर में चलाया जा रहा है, यानी कुछ गांवों का चयन करते हैं, उस
0: जी
1: कुछ गांवों में से कुछ किसानों का हम चयन करते हैं और उनके साथ में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती का जो मिशन के जो भी घटक हैं वो
0: जी
1: उन किसानों के साथ में हम लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भगत जी आपका। और किसान भाइयों को हम ये बताना चाहेंगे भैया कि हमें वो भी समस्याओं का जो समाधान उन्हें करना है तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07632 और हमारा ये कोड है, आप फ़ोन कर सकते हैं। इसका नंबर है 2921 73। आप किसान भाइयों अपनी समस्याओं का समाधान इस पर फ़ोन करके आप कर सकते हैं। किसान साथियों इस नंबर को बिल्कुल ज़रूर लगाएं और जिस प्रकार से अभी हमारे बीच जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप तरह तरह की योजनाओं से लाभ ले सकते हैं और योजनाओं के बारे में
1: इसी
0: जानकारी।
1: बीच आपने फोन नंबर्स बताया और किसान
0: जी
1: की भाई कितने जागरूक है कि एक फोन कॉल हमारे बीच में है।
0: बिल्कुल
1: हेलो,
0: बिल्कुल
2: जी सर नमस्ते
1: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी, मैं आदर्श सोनी बोल रहा हूँ, ग्राम पाथरवाड़ा तहसील कटंगी।
1: जी सोनी जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में।

0: जानना चाहते हैं आज आप?
1: जी अभी साहब बता रहे थे कृषि अंतरीकरण वाला, तो उसमें जो अभी राइस ट्रांसप्लांटर मशीन है तो उसकी सब्सिडी कब तक मतलब शुरू होगी, ऐसा
0: बिल्कुल
1: क्या मिलेंगी?
0: सही प्रश्न है।
2: बिल्कुल, इसको इस जो राइस ट्रांसप्लांटर की जो सब्सिडी है, हमारा एक कृषि का ही एक विभाग है जिसको हम कृषि अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं, और अभी शीघ्र ही उसके जितनी भी मशीन हमारे, चाहे राइस ट्रांसप्लांटर हो, सुपर सीडर मशीन है, हैप्पी सीडर या हमारी सीड ड्रिल मशीन, उन सभी मशीनों पे बहुत जल्दी जैसे ही टारगेट आएंगे उसकी सूचना जो है आपके जो हमारे सहायक कृषि यंत्री होते हैं, कुलस्ते जी हैं यहाँ पर पदस्थ, उनके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। कृषि विभाग के माध्यम से भी हम लोग व्हाट्सएप पे भी चलाते हैं कि भाई पोर्टल ओपन हो गया है, टारगेट मिल गए हैं, तो उससे भी आपको जानकारी इसकी मिलती है।
3: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं योजनाओं के बारे में, हम अपने किसान भाइयों को जो तरह तरह की जानकारी देते हैं योजनाओं के बारे में, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए।
2: बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले किसान भाइयों के यहाँ बलराम तालाब का एक स्कीम है, जिसमें किसान खुद अपने यहाँ बलराम तालाब तालाब खुदवाता है, तालाब खुदवा के उसकी सिंचाई के रूप में भी पानी का इस्तेमाल कर सकता है और मछली पालन का भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और स्प्रिंकलर के जो इरिगेशन सिस्टम होते हैं उन पर भी किसान भाइयों को प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान है, और काफी मात्रा में पिछले साल काफी अच्छे टारगेट भी आए थे, और काफी किसान भाइयों ने, करीब करीब 850 किसान भाइयों ने हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे, तो ये भी पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन किसान भाई डालते हैं इस पर। और साथ ही साथ जो प्रथम हमारे किसान भाई थे, उन्होंने हमसे योजनाओं के नाम पूछे थे, शॉर्ट में मैं उनको बता देता हूँ कि एक तो हमारे नलकूप खनन है, ट्यूबवेल खनन की एक स्कीम है, एक ODOP के नाम से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके अंतर्गत हमारा GI टैग वाला चिन्नौर चावल है, उसके अंतर्गत कुछ घटक हैं जिन पे हम किसानों को जागरूक करते हैं, प्रशिक्षण वगैरह देते हैं। साथ ही साथ एक हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है
3: जी।
2: इसमें दो प्रकार के घटक हैं हमारे, एक पल्स यानी दलहन वाली फसलों का है और एक हमारी जो अनाज वाली फसलों का है। तो अभी अनाज वाली फसलों के टारगेट आए हैं, उसमें हमें जो टारगेट मिले हैं खासतौर से कोदो कुटकी और रागी जैसी फसलों के मिले हैं। साथ ही साथ जो हमारी पल्स वाली है, तो पल्स में हमें अरहर, मूंग, उड़द, उसके लक्ष्य मिले हैं। तो और साथ ही साथ जो हमारी तेल वाली फसलें हैं, उसके लिए भी एक स्कीम हमारी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, तो ये तेल वाली फसलों के लिए भी हमको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है अलसी जैसी फसलों के लक्ष्य हमको मिले हैं, रामतिल के लक्ष्य मिले हैं
3: जी।
2: तो मैं सभी किसान भाई जितने भी मेरे हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे विकासखंड स्तर के जो कार्यालय होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा किस्म का बीज, उच्च गुणवत्ता वाला कीट रोधी बीज और डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हमारे पास है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी हमारे पास, उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि रोग और कीट से वो लड़ सकती हैं, अच्छी उत्पादन देने वाली हैं। इस साल जैसे देख रहे हैं हम अल नीनो का प्रभाव होने वाला है, तो बारिश की जो जो संभावना है वो कम बताई जा रही है, तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए कम दिन की जो, या जिसको यहाँ हल्के धान के नाम से जानते हैं, 115 से 120 दिन वाली अच्छी से अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो रिलीज की गई है वैरायटी, ऐसी किस्मों का जो बीज है हमारे पास धान का विकासखंड स्तर पे अवेलेबल है, और बहुत सस्ते दाम पे 41 रुपए किलो, 42 रुपए किलो में वो बीज किसान भाइयों के लिए अवेलेबल है। अभी तक हम करीब करीब 800 क्विंटल का बीज किसान भाइयों को उपलब्ध करा चुके हैं।
0: बिल्कुल सर, बात को हम जारी रखेंगे।
3: इसी बीच एक श्रोता हम जुड़ना चाहते हैं। हेलो
4: हेलो
3: हेलो, हाँ कहिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: मैं दिव्या जैतपाल बोल रही हूँ, आरंभा से ब्लॉक खैरलांग जी।
3: अच्छा बोलिए दिव्या जी, क्या प्रश्न है आपका?
4: हमें DSR के बारे में जानना था ना
3: जी।
4: जैसे कि मतलब हमारे किसानों का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कचरा बहुत उगता है, फिर वो जैसे मतलब जो गेप है वहाँ पे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा,
4: और मतलब वो क्या मतलब सूखे में बोवार करना है, लेकिन वो जो बीज होता है ना, बीज में जैसे रखना है, तो वो उसके लिए मतलब उनका वो ये क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब वो जो कचरा उठता है, कचरे से बहुत परेशान है वो लोग।
3: अच्छा।
4: वो ये बोल रहे हैं कि जैसे मतलब हम लोगों ने

0: वो अभी से पानी चलाएंगे वो तो पानी मतलब सूखता नहीं है। जैसे हमें ऑप्शन बताए थे कि जैसे पानी चलाना है और फिर वो थोड़ी दिन में मतलब कुछ दिन में उगेगा कच्चा, उसको खत्म करना है, तो
1: अच्छा,
0: वो वाले नहीं समझ पा रहे थे उसका निराकरण
1: उसके
0: कर
1: बारे में बिल्कुल बिल्कुल।
2: बिल्कुल। आप नींदा की बात कर रही हैं और हम कहते हैं कि नींदा नाशक का भी जो है उपयोग करें, लेकिन विस्तृत जो है हमारे विशेषज्ञ
0: हाँ
2: हर आपको जानकारी
1: ओके
2: देंगे।
1: दिव्या जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और आपके जो सवाल हैं उनके कुछ मैं जवाब देता हूँ यहाँ पर, देन इसके बारे में DSR के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा।
0: हाँ जी सर,
1: ओके तो सबसे पहले एक आपने सवाल किया था कि कचरा तो उगता है, देखो नेचर का तो काम है कचरा तो उगेगा, राइट है ना, लेकिन अभी हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे नींदा नाशक खरपतवार नाशक दवाइयां हैं कि हम जैसे ही हम बीज बोते हैं और अभी हमारे खेत में बीज बोने के बाद में यदि हमारे पास खेत में नमी है तो हम पेंडामेथलिन एक खरपतवार नाशक दवाई आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बोने के 48 घंटे के भीतर। इसके बाद में जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की फसल हो जाती है, या यूं कहें कि कचरे की जो पत्तियां हैं 2 से 3 पत्तियां आ जाती है, उस टाइम पे हमको एक और नींदा नाशक या खरपतवार नाशक दवाई डालने की ज़रूरत है जिसको हम बिसपायरीबैक सोडियम के नाम से जानते हैं। अगर इन दोनों स्थिति पे हमने यदि नींदा नाशक दवाई का इस्तेमाल किया तो फिर हमारा खेत जो है कचरा मुक्त हो जाता है,
0: जी
1: एक चीज़ तो ये बात। दूसरी बात, मैं किसान भाइयों को इसमें कुछ मोटे मोटे बिंदु बताना चाहता हूँ कि सूखे में भी हम बुआई कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो मानसून की संभावना 22 से 25 जून के बीच की आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: उसके 5 से 7 दिन पहले भी किसान भाई सूखे में
0: कर
1: बुआई
0: सकते
1: इसकी
0: हैं।
1: कर सकते हैं, बशर्ते वो बीज को उन्होंने भिगोया गया ना हो, पानी में नहीं भिगोया हो उस बीज को, क्योंकि बीज उपचार करते हैं तो कई बीज उपचार ऐसे हैं कि पानी में भिगो के रखते हैं, तो भिगोना नहीं है बीज को। बीज को 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बिल्कुल भी नहीं बोना है, ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छी जो मशीन है हमारी वो सुपर सीडर मशीन है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं। तीसरी बात यह है कि यदि कोई किसान गीले में बुआई करता है, खेत गीला है वो बुआई कर रहा है, तो उनके खेत 20 दिन तक कम से कम पानी नहीं भरना चाहिए खेत
0: बिल्कुल
1: में, ठीक है। बोने के 20 दिन तक बारिश होती रहेगी लेकिन पानी नहीं भरना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं, ढेंचा लगाते, ढेंचा और धान को भी बीच में एक साथ बोते हैं तो ढेंचा जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाली फसल है,
0: बिल्कुल
1: खरपतवारों
0: बिल्कुल
1: को दबा देती है वो, और जब ढेंचा हमारा 30-35 दिन का हो जाता है तब हम उसके ऊपर एक 2,4-D एस्टर करके एक निंदानाशक दवाई आती है, उसके स्प्रे करने से जो खरपतवार भी नष्ट होते हैं साथ ही साथ हमारा जो ढेंचा है वो भी सारी की सारी पत्तियां गिरा देता है, मल्चिंग का काम करता है, उसकी वजह से कोई भी खरपतवार उग नहीं पाते हैं। साथ ही
0: बिल्कुल
1: साथ जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की होती हो जाती है, उस टाइम पे यदि किसान भाई मैं थोड़ा बहुत उन खेत में पानी भर के रखते हैं 20 दिन के बाद में, उसमें जगह जगह हमारा एजोला नाम का जो एक
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक फंजाई है वो, अगर उसको भी हम लोग फैला
0: एजोला
1: देते हैं एजोला को भी, तो वो भी खरपतवार नियंत्रण का काम करता है, खरपतवारों को उगने नहीं देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो DSR को लेके बहुत ज़्यादा हमारे बालाघाट जिले में हम लोग काम कर रहे हैं,
0: जी
1: और सबसे अच्छी बात है कि DSR करने से यानी बीज का सीधा बोने
0: जी
1: से, सीड ड्रिल मशीन से बोने से, DSR से ये सुपर सीडर मशीन से बोने से क्या होगा, कीचड़ की खेती कर करके ना जमीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है,
0: अच्छा
1: कीचड़ की खेती करते हैं तो,
0: जी
1: क्योंकि उसमें कीचड़ मचाना पड़ता है,
0: जी
1: पानी जमीन के अंदर नहीं जा, तो 10-12 साल से हमारे यहाँ कीचड़ की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, उसकी
0: जी
1: वजह से हमारे जमीन के अंदर पूरा पानी खत्म हो गया,
0: जी
1: और बीच में जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो फिर किसान ट्यूबवेल का पानी निकाल के खेत में डाल देता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: और पानी की जमीन के अंदर कमी होती चली जा
0: जी
1: रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे तैसे आप धान तो पैदा कर लेंगे कीचड़ से, लेकिन आपकी रबी की जो फसलें हमारी गेहूं, चना, मसूर, तिवड़ा, इन फसलों की आप
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी उत्पादन नहीं ले पाते। मेरे सभी किसान
0: बिल्कुल
1: भाइयों से अपील है, आप DSR के माध्यम से बीज बोइए, उससे क्या है जमीन के अंदर पानी जाएगा, मिट्टी की संरचना सुधर जाएगी और आने वाली रबी की फसल बहुत अच्छी होती है। जो किसान हमारे यहाँ DSR कर रहे हैं या बुआर की खेती कर रहे हैं, उनके खेत में 16 कुंटल 18 कुंटल तक गेहूं पैदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि जमीन की
0: जी
1: संरचना सुधर जाती है, अच्छे बैक्टीरिया और केचुए पनपने लगते हैं। कीचड़ मचाने वाली खेती में सिर्फ हम कीचड़ से हमारे खेत खराब कर रहे हैं और पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, ये मैंने
0: जी
1: मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ पर बताया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल और बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। और किसान साथियों, हम आपको बताएंगे कि आप बिल्कुल लगातार जुड़े रहे अपने फ़ोन कॉल से, और हमें

0: आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 2921 इस नंबर पर, और कोड है हमारा बाहर के श्रोताओं के लिए 07632। और किसान साथी बिल्कुल बराबर जुड़े रहें, क्योंकि हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है योजनाओं से ही संबंधित है और आप योजनाओं का बिल्कुल लाभ ले सकते हैं।
1: सर अभी हम बात भी कर रहे थे कि बीज कहते भी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बीज। तो बीज को लेकर अभी आप बता रहे थे कि हमारे जो कृषि विभाग में बीज उपलब्ध हैं, तो कौन कौन से प्रजाति के हैं और कैसी प्रक्रिया है प्राप्त करने की, जिससे कि हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकें।
2: बिल्कुल सर,
0: इसी बीच एक श्रोता हम जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो,
3: आकाशवाणी केंद्र बाला का।
0: बिल्कुल, आपका स्वागत है, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: सर ने जैसा बताया कि किन्नौर का बीज ये कहाँ से मिल पाएगा टैक्स आपके वाला,
1: इसी विषय पर अभी बात हम कर रहे हैं। और
0: बिल्कुल, आपका शुभ नाम बताइए।
3: राजेश बिसेन, नेवर गांव, लालबर्रा तहसील, जिला बालाघाट।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपका समस्याओं का समाधान जरूर होगा, सर बताइए इन्हें।
2: जी, चिन्नौर जो वैरायटी है हमारे यहाँ की लोकल और ट्रेडिशनल वैरायटी है, ठीक है ना, और इसका इसके बीज का कोई अलग से उत्पादन नहीं करते हैं। जो किसानों के पास में जो चिन्नौर जो किसान उगाते हैं वो उसी बीज को वो बोते हैं, है ना ऑलरेडी। लेकिन इस पे चिन्नौर की वैरायटी भी डेवलप की है वारासिवनी कॉलेज के माध्यम से, और इस बार हमने उसको सीड प्रोडक्शन में हम लेके जा रहे हैं।
0: अच्छा।
2: तो किसानों के लिए इस साल हम बीज तैयार करेंगे और अगले साल में हम बड़ी मात्रा में किसान भाइयों को चिन्नौर उपलब्ध करा देंगे। इस बार हमारे पास चिन्नौर नहीं है, जिन किसान भाइयों के पास में चिन्नौर वैली जो हमारा एक APO है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है ना, और उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम देखिए मुझे नाम
1: लाल बर्रा,
2: हाँ
1: नकपुरे
2: नहीं, अच्छा ही नाम है उनका, तो उन वहाँ वो जो ये कौन जो एरिया है जहाँ पर चिन्नौर पैदा होता है,
1: कायदी से लगा हुआ,
2: कायदी वाला जो एरिया है, कायदी के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के किसानों से आप संपर्क करेंगे तो आपको संभवतः मिल सकता है।
3: जी धन्यवाद।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका।
1: सर बीज को लेकर हम बात कर रहे हैं कि बीज और बीज कहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे।
2: यस, बीज प्राप्त करने के लिए जैसे आपने बताया, बीज एक ऐसा कंपोनेंट है कि किसान भाइयों को बीज के बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो वैरायटीज हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की सभी रिलीज्ड वैरायटी हैं, नोटिफाइड वैरायटी है, अनुसंधानित वैरायटी है। इन वैरायटी को 15 से 20 साल में इनके ऊपर अनुसंधान करके तैयार किया गया है। सारी की सारी वैरायटी सूखा रोधी वैरायटी है, ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, इनके अंदर जिंक, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इस तरह के जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा है, इसलिए उसका जब चावल बना के हम खाएंगे तो हमको स्वादिष्ट लगेगा।
0: अच्छा,
2: लेकिन जो हाइब्रिड और अन्य जो किस्में हैं जो बाजार में मिलती हैं उनका चावल बना के खाएंगे तो चावल स्वादिष्ट नहीं लगता। तो ये सारे के सारे बीज हमारे विकासखंड कार्यालय में उपलब्ध हैं और बहुत सस्ते दामों पर हमारे विकासखंड कार्यालय में किसान भाई वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। इसमें JR 206 है, JR 21 है, JR 81 है, JR 10 है, स्वर्णा है, MTU 1010 है, ऐसी बहुत शानदार और लेटेस्ट वैरायटी हैं ये,
0: बिल्कुल
2: है ना। और मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा, हमारे विभाग से आप है ना अथेंटिकेट सीड खरीदना चाहिए, प्रमाणित बीज खरीदना चाहिए। ये बीज आपके पास कृषि विभाग के माध्यम से जब आता है तो खेत में इसको 2 बार चेक किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी इसको प्रोसेसिंग प्लांट पे चेक करते हैं, फिर उनके अधिकारी उसका सैंपल लेते हैं, लैब में भेजते हैं, वहाँ टेस्टिंग होती है। जब सारे पैमानों पर खरा उतरता, जब जाके वो बीज जो है बोरियों में पैक होके फिर हमारे ऑफिस में आता है, और जो जो बीज मार्केट में मिल रहा
0: जी
2: है
0: जी,
2: उसकी मतलब उसकी अथेंटिसिटी हम नहीं कह सकते क्योंकि वो कंपनी ने तैयार किया है।
0: अच्छा।
2: उस पे गवर्नमेंट ने तो उसका कोई सील ठप्पा उसके ऊपर नहीं
0: जी,
2: लगा
0: जी,
2: है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: जब तक कि हम उसको टेस्टिंग करके नहीं देख लेते तब तक हम कह नहीं सकते कि कैसा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन हम हमारे बीज की गारंटी लेते हैं और सारे किसान भाइयों से अपील करता हूँ, हमारा बीज आप लेके जाइए और बहुत अच्छा उत्पादन देंगे हमारी सभी वैरायटी।
1: सर इसी बीच एक किसान साथी हमसे जुड़ गए चुके हैं। हेलो
4: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
4: बालाघाट दर्रा से भीकम चौहान बात कर
0: जी, जी। बोलिए भीकम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: जैसा कि आदरणीय मालवी साहब ने बताया कि हम किन्नौर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं
0: जी,
4: लेकिन इसमें एक समस्या आती है। किन्नौर में

0: उत्पादन अच्छा होता है, साथ ही उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, लेकिन इसकी जो बढ़वार होती है उसमें धान गिरने की जो समस्या आती है उसके लिए क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या नवाचार कर रहे हैं, क्या उसमें अभी अनुसंधान हो रहे हैं, थोड़ा सा कृपया बताएं सभी को।
1: हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि जो चिन्नौर की वैरायटी ऑलरेडी जो है तैयार कर ली गई है, और उसका जो सीड है हमारे पास इतना नहीं है कि हम अभी किसान भाइयों को दे पाए, लेकिन जितना बीज हमारे पास में है उससे हम सीड प्रोडक्शन यानी एक कुंटल से हम लगभग 20 कुंटल हमारा पैदा, एक कुंटल से लगभग 60-70 कुंटल हमारा और उससे भी ज़्यादा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास नेक्स्ट ईयर चिन्नौर चावल, और वो भी जो आप लंबी वैरायटी की बात कर रहे थे, ये जो चिन्नौर है ये ड्वार्फ है, यानी ये ना कि छोटा है, ऊंचाई ज्यादा नहीं है तो गिरने की संभावना नहीं है, राइट? तो गिरने का कोई इशू पूरी तरीके से लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन जो अभी आपके पास में ट्रेडिशनल पुरानी हमारी चिन्नौर अवेलेबल है, यदि अब अगर अपन उसको डिस्टेंस पे बोते हैं और हम यूरिया खाद नहीं देते हैं तो, और जैविक खाद भी कमी देना है क्योंकि वो वैरायटी ज्यादा खाद मांगती नहीं है।
2: अच्छा, अच्छा।
1: जो किसान भाइयों ने मुझे बताया है
2: जी,
1: उसके आधार पे आप खुद ही किसान हैं भिकम जी, तो मैं आपको क्या ज्यादा जानकारी दूंगा, आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं इस मामले में। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ भिकम जी, आने वाले टाइम या सारे जितने भी हमारे बालाघाट के किसान सुन रहे हैं, चिन्नौर का बहुत जबरदस्त क्रेज आने वाला है। अभी हमारे दो अधिकारी और एक हमारे जो एपीओ के किसान है उनको हमने वहाँ
3: इंदौर
1: में जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ उसमें गए और वहाँ बहुत अच्छे रिस्पांस मिले। फिर दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक राइस एक्सपो लगा हुआ था, वहाँ भी हमारे अधिकारी और हमारे किसान गए थे।
0: बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा
1: जी।
0: हमारा पूरा 60 किसानों का दल बालाघाट से प्रदेश के बाहर आत्मा समिति के माध्यम से भीलवाड़ा राजस्थान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए गया था। वहाँ हमारे जो प्रगतिशील किसान है भेजलाल माने जी, जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने वहाँ 10 किलो चावल एज ए गिफ्ट भी दिया और बहुत सारे चावल चिन्नौर चावल का ऑर्डर भी मिला है और बहुत पसंद किया जा रहा है। और आज ही हमने अपने जो बाहर से आए हुए अतिथि थे दिल्ली से, उनको इसकी खीर खिलाई, उन्होंने बहुत इसकी तारीफ की।
1: मेरे भी अतिथि कल आए थे, मैंने भी उनको गिफ्ट किया है चिन्नौर चावल। और मैं आपको भिकम जी बताना चाहता हूँ, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मेरे पास कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं चिन्नौर चावल की डिमांड के लिए, ठीक है ना? तो मैं उन ऐसे जो हमारे पास स्पेशल हमारे जो VIP जो होते हैं उनके लिए भी हम चिन्नौर चावल बालाघाट से हम भिजवाते रहते हैं और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ कि चिन्नौर चावल जो पहचान बना चुका है उसकी स्वाद और खुशबू की वजह से काफ़ी डिमांड है उसकी। सभी किसान भाइयों से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जो चिन्नौर को पैदा कर सकते हैं जरूर कीजिए। एक समस्या एक मार्केटिंग की हमारे साथ में आ रही थी कि चिन्नौर कैसे बिकेगा कैसे बिकेगा। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बिकने, और हमने हमारा भी एक सिस्टम डेवलप कर लिया, उसकी वजह से बालाघाट में आज हमारे पास कोई भी APO हमको चिन्नौर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरा हमने चिन्नौर बिकवा दिया, चिन्नौर पूरा खत्म हो गया है उनका। अब चिन्नौर की जो है 110 रुपये किलो वाला चिन्नौर, अब थोड़ा बहुत किसी के पास बचा है तो 140-150 रुपये किलो में दे रहे हैं वो, ठीक है? तो आने वाले समय में चिन्नौर की मार्केटिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम देखते हैं कि और बालाघाट का जो चिन्नौर है GI Tech जो मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं बालाघाट इस चिन्नौर की प्रसिद्धि बालाघाट में तो है। सर अब चूँकि समय हम अनुमति नहीं दे, क्या कहना चाहेंगे अंत में और क्या अपील करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सर, मैं बहुत अंतिम के क्षणों में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि DSR एक अभियान हम चला रहे हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि बीज को सीधा बोना है, रोपा तैयार नहीं करना है, खार नहीं लगाना है किसान भाइयों को, उससे बहुत सारे नुकसान है। खार यदि किसान नहीं लगाएगा तो कम से कम 8,000 से 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसान हमारा बचाएगा, ठीक है? DSR लगाने से उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। DSR के लिए एक बहुत अच्छी मशीन आई है, स्टेप सीडर मशीन, हमारे यहाँ हनुमान चौराहे में बालाघाट पे एक दुकान है, वहाँ पर वो स्टेप सीडर मशीन बुलवा ली है और वहाँ किसान भाई उसको देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो स्टेप सीडर जो मशीन है वो धान का बीज बोने के लिए स्पेशल मशीन है और इतनी अच्छी मशीन है कि पूरे हरियाणा और पंजाब में वो इतनी फेमस हो रही है। तो हमारे बालाघाट में भी हम बहुत जल्दी इसको फेमस करने वाले हैं। मशीन है सुपर सीडर मशीन भी बहुत जबरदस्त है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। शॉर्ट में किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं और कि किसान भाई प्लीज आप पराली मत जलाइए, आप पराली मत जलाइए, क्योंकि

0: पराली जो है ना, आप जो खाद देते हैं ना खेत में, उससे ही
1: वही
0: पैदा होती है। और पराली हमारी दुश्मनी, पराली हमारी खाद है। इस खाद पराली को आप खेत के चारों कोनों में मेड़ पे इकट्ठा कर दीजिए, बारिश में सड़ जाएगी,
1: हाँ
0: अगले
1: ये
0: सीजन में आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: कृपया करेंगे। और एक आखिरी मेरा एक और निवेदन है, किसान भाइयों, जो बीज हम दे रहे हैं, उस बीज से आप बीज बना सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: उसको पूरे के पूरे को मंडी नहीं बेचना है,
1: जी
0: उपार्जन में नहीं बेचना है, बचा के रखना है।
1: बिल्कुल
0: अपने
1: बिल्कुल
0: पड़ोसी किसान को दीजिए, अपने रिश्तेदार किसान को दीजिए, उस बीज को बचा के रखिए। जो भी कृषि विभाग आपको बीज देता है, वो बहुत अच्छी किस्में होती हैं, उनका बीज बचा के रखना है, हमारे किसानों को भी देना है। आपसे ये
1: बिल्कुल
0: मेरा विनम्र अनुरोध
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सर, किसान भाई बीज बैंक भी तैयार करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज
1: और
0: के इस
1: आज
0: कार्यक्रम
1: की
0: में आप हमारे बीच में आए और हमारे किसान
1: बिल्कुल,
0: भाइयों के सवालों का आपने जवाब दिया।
1: और हम तकनीकी सहयोग के बारे में बता दें कि इसमें तकनीकी सहयोग रहा मनोज जैन और प्रदीप एड़े सर का। और किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में से हमें अनुमति दें, स्वीकारी मनीषा गोस्वामी,
0: और अपने रेडियो मित्र अजय बैस का
1: नमस्कार।
0: बहुकार।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत हेलो किसानवाणी। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं। अब है वक्त कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं, स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का, और आप हैं साथ अपनी हम सफर ममता कटरे के। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज फिल्म तीन देवियां इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, संगीत SD बर्मन का और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो हूँ, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को फिल्म द ट्रेन में। इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं आम्रपाली फिल्म के इस तराने का, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों को फिल्म सिलसिला में। जावेद अख्तर के गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

श्रोताओं, आइए अब लुत्फ उठाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों को फिल्म अभिलाषा में। धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी तराना हमने लिए हैं फिल्म अभिनेत्री से। अभिनेत्री फिल्म के इस गीत को आवाजें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को कलमबद्ध किया है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। इजाजत दें अपनी हमसफर ममता कटरी को। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब है वक्त कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का। कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का पहला नजराना हम लेकर आए हैं सोनू निगम की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पॉप म्यूजिक यहीं संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पल में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया

0: भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि

0: पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है।

0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का यह अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा, इस फिल्म से ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ है।

आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ। संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम, कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे।

शीर्ष प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है जब वसंत देसाई ने

खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने, चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों

की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नज़र पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

चे लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूबकर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

से मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में

रात ढलती है, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

0: पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबे जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वो ही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।
1: ते

सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब है वक्त कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत का। श्रोताओं, स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत में आप सभी सुधी श्रोताओं का, और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि मित्र ममता कटरे। तो आइए देर न करते हुए करते हैं कार्यक्रम का आगाज कार्यक्रम के इस पहले नजराने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर की आवाज को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत की अगली पेशकश आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में। साहिर के बोल को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने और फिल्म का नाम है जाल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला तराना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। फिल्म अनहोनी के इस गीत के लिए गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म सुहागन का ये तराना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में, मदन मोहन का संगीत, हसरत जयपुरी का गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला तराना आइए सुनते हैं फिल्म आमने सामने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों के लिए धुन तैयार की है कल्याण जी आनंदिनी ने और रचना आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, भी आपने आनंद लिया फिल्म आमने सामने के इस तराने का, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी के इस गीत के लिए संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीत यहीं संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार 11 बजे और 11:05 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास,

0: सापूर्त श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan